0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Yo, this is your boy African Sun, Ruben El Crocodile.

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: वो आने को चाहे नहीं अन्यों पहले जहां मोना बिरुकरे मालो या

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल यू नो कॉम
1: इटी यूनियो और रेडियो.